से विपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण ने सर्वप्रथम सड़क रोकथाम और नियंत्रण संबंधी पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार राष्ट्रीय कार्य योजना 2083 हिजो सार्वजनिक गरेको छ, जसमा सर्वप्रथम सड़क उपचारलाई थप व्यवस्थित गर्ने

0: ఏం తెలుసా, అది గడబడి చేస్తున్నాయి అని చాలా हाम्रो शरीरको एकदमै नर्मल परिस्थितिका हो। अब सुनौ यस्तो भयो भने साथीहरू के भन्छन्? बढ्दैका साथीहरूको कुरा सुनौ है।
1: अब म विद्यालयमा लाइब्रेरीमा साथी नै भन्ने छ नि शिक्षकहरूको सहयोग लिएर आफूलाई

0: जब पिछला इधर होकर बिमारी निमाल दौर में समय मेरे पास बताने के ऊपर मिटारी बिचारी के यह प्रकृति पर कमाने के प्रभाव दार होने के तो नहीं कर वो मुझसे ना तबाय पौधा से फिर नवार मजा कठोरता आप सकल दार देखो फिर दार दर्शन हम लोग ऐसी करना हो ये जहाँ से मन कम कर इसमें मजा नहीं आता ना मतलब तुम
1: मामा बिचारी दर्द उतार नहीं धान कम करने मजा
0: हमारा एक जाने के लिए डाक में कि हम

विशेषकर घर किसान कर लाख मौसम अनुसार खेतीपाती करना समय बरखा का अवस्था

0: 40 वर्ष कटेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौं।
1: चिसो पदार्थ, माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफुल खाऊ।
0: मद्यपान र धूम्रपान सेवन नगरौं।
1: स्वस्थ रहौं, सुखमय जीवन बिताउँ।
2: रेडियो पूर्वाधार एफएमद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

आचार्य पुत्र विलास वास्तविक नगरपालिका दिशांचुक के नदी सिद्धार्थ मोबाइल नंबर 98 6

0: संध्या सवा छ बजे हमार संदेश भवन और स्वागत बा संध्या बिंदु संगम कुमार उत्पादित हमार संदेश राजापुर रेडियो रेडियो प्रसारण हमार संदेश का बुले डाली मुख्य मुख्य समाचार के शीर्षक से बांसवाड़ी सहमति पूजा भी चना मोती बिंदु कबरे मैथिला पटक एक महीना में 80 मुद्दा दर्ता 130 जना प्रतिवादी पकड़ाओ कोहलपुर में हवाई फायर पीपल ऑफ हिम सहित दुई जन पकड़ाओ और पत्रकार किशोर श्रेष्ठ न पकड़ाओ करा अदालत जीते हल अनुमति पूरा समाचार बिंदु से
1: नगरपालिका छ प्रतिपुरमा आज हरेली पूजाकै बेला धान लगा सगरपाल्च धान बताई न्यायद्वारा धानमा रोग किरा निरागस गर्न उद्देश्यले हरेली पूजाकै हिँडेको 416 घर निर्ग मन्त्रीपुर गाउँ अन्तर्गत दसैया थारूको अगाडिमा त्यसमध्ये एउटा राम जीवन थारू केशवका टिकाराम थारू गाउँ साझा देउटा र रक्षणमा मजा खा विधिपूर्वक भुइँमा अथवा भूमिदेवको पूजा गर्नबाट र मकै मिसाइल भात लगायत मेमिलिङ प्रकारका मिठाई लगायतका पूजाको सामानमा 10,000 खर्च महिलाक वर्ग दसैया थारू जानकारीबाट दुई दिन राम कैदिन हरेली पूजामा कालदेव कन्या गुरुवा राम जीवन थारू दुधको सुहा छठ मन्त्रले सादल बनेर खिर बनाना गाउँको खेतमा पानी लग्ना खेलकुटामा दरबाट हरेली पूजा निम्जना गर पछिको गाउँ खेलकुटामा खिरबन अथवा जावन भएपछि सकुजानको खेतमा पानी दिन धानमा लग्ना रोग व्याधि निरोधन धान हरे होइन धार्मिक विश्वास रहला पाँचगढी नगरपालिका चार सिट आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा सञ्चालित निशुल्क आँटी शिविरमा 25 जना मोती बिन्दु ग्रामीण खेला पटबाट आज सञ्चालन भइरहेको शिविरमा 130 जना आँखी जाँच तथा बिमा गरिरहेमा उमध्ये 25 जनामा मोती बिन्दु समस्या एक पटक नेत्र सहायक मनोज कुमार यादव जानकारी

0: सभी फल को सहित पूरा खाना है बच्चा आना तंदुरुस्त बनाए पूरा खाना अगर दुई वर्ष समय जारी रहिए।
1: रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा चलेको जारी सन्देश।

नगर पालिका में बाल बालिका का स्वास्थ्य वृद्धि और विकास का लागि पोषण महत्वपूर्ण होने भएकाले स्वास्थ्य संस्था मार्फत नियमित स्वास्थ्य परीक्षण पोषण अवस्था को परीक्षण तथा अभिभावकलाई खानपिन सम्बन्धी परामर्श दिने गरिएको छ। बाल बालिका को पोषण स्तनपान पूरक आहार सरसफाई तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी अभिभावक सम्म पुर्याउन गरिएको प्रयासका बारेमा बताउँदै सम्पूर्ण नगर